0: நேயர்கள் கவனத்திற்கு, ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी वांडवाल। एशियन गेम्स के मैदान से भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पदकों की खबरें, हर बड़े मुकाबले का ताजा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं सीधे आप तक। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी अपडेट के साथ। एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक हासिल लिया है। उनका अंतिम स्कोर 484.6 रहा, जो दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक रहा था। ईरान ने यहां पर कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: जी थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द अदर गुड न्यूज दैट कम्स दिस मॉर्निंग इज वंस अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग। दोस्तों, इंडियन मेन इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस हैव आल्सो सिक्योर्ड द सिल्वर फॉर इंडिया। जी हाँ, दे डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फिनिशिंग थर्ड विद 589, नीरज कुमार स्टूड फोर्थ विद 588 और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल फिनिश नाइन्थ विद 585। भारत का टोटल स्कोर इसके साथ बन गया था 1762 यानी 1762, विच अर्नड देम द सिल्वर मेडल। चाइना टुक अवे द गोल्ड विद 1766 पॉइंट्स लेड बाय जैंग चंगोंग्स 593, जो अपने आप में एक नया क्वालिफिकेशन गेम्स रिकॉर्ड है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि अब ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार वापस से आज सुबह हमें 10:30 बजे मैदान में देखेंगे प्लेइंग द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द इंडियन मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस।
1: साक्षी, एक और पदक के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में मनु शाह और दिया चितले ने भारत का कांस्य पदक पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने हांगकांग के वोंग चुंग तिंग और हु डुई केम को हराकर जो सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। वहीं एक अन्य मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े को चीन के लिन सिंदोंग और कुमेन से हार मिली है।
2: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आज हम आ रहे हैं, बिकॉज स्क्वाश में भी भारत को एक मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम अश्योर हो ही चुका है। जोशना चिनप्पा विल बी हैविंग अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 ईयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट। द 40-year-old पार्टनरिंग विद वी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स डबल स्क्वाश सेमी फाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर देयर फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3 11-5। जोशना एंड वी सेंथिल कुमार विल नाउ बी फेसिंग हांगकांग्स ली काई एंड टैंग मिंग होंग इन द सेमी फाइनल्स टुमारो, thereby assuring India of at least a bronze medal in the match.
1: साक्षी, अब चलते हैं हॉकी के मैदान पे। भारत ने जापान को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी और एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था उसे जारी रखा है। लाल रिम स्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की जो बढ़त थी उसको दोगुना कर दिया। इसके बाद नवनीत कौर ने तीसरा गोल दाग दिया। कोबायाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल दागा, लेकिन भारत ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली है।
2: जी शाही, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां हमारे भारतीय शटलर्स ने हमें फिर से एक बार आज सुबह खुशखबरी ही दी है, बिकॉज इंडियाज इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन एट द एशियन गेम्स गॉट अंडर वे विद ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रास्तो टेकिंग ऑन मालदीव्स अमीनाथ अब्दुल रजाक एंड निबल अहमद इन द मिक्स डबल्स। द इंडियन पेयर मेड अ डोमिनेंट स्टार्ट कंफर्टेबली टेकिंग द ओपनिंग गेम 21-8। इसके बाद जो दूसरा गेम था उसको भी हमारे दोनों ही भारतीय शटलर्स ने अपने नाम कर लिया 21-7 से, देयर बाय विनिंग द मैच इन स्ट्रेट गेम्स 2-0 शाहिद।
1: जी हाँ, एक एथलेटिक्स की खबर दे देते हैं। महिला हेप्टाथलॉन में लॉन्ग जंप में अनामिका अनीश 6वें स्थान पर है। कोई अच्छी खबर नहीं, पूजा 10वें स्थान पर रही। ओवरऑल स्टैंडिंग में अनामिका 7वें और पूजा 9वें स्थान पर रही थी।
2: जी, और फेंसिंग की दुनिया से आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेके आएंगे, बिकॉज इंडिया हैव बीन पुट ऑन द बैक फुट अर्ली इन द मेंस टीम फॉयल राउंड 16 टाई अगेंस्ट हांगकांग एट द एशियन गेम्स। सचिन बिगैन विद अ 2-5 लॉस टू चुन चोय बिफोर हिमश सिंह वेंट डाउन 3-5 इन द सेकेंड रिले, लीविंग इंडिया 5-10 बिहाइंड। वहीं पर आदित्य देन गेव इंडिया सम होप विद अ 6-5 विक्ट्री ओवर कार लॉन्ग च्योंग, रिड्यूसिंग द डेफिसिट टू 4 पॉइंट्स एट 11-15। हाउएवर 17 साल के सचिन स्ट्रगल टू फाइंड इनफ टचेस इन द नेक्स्ट रिले, विद हांगकांग extending their advantage

0: टू 1912. सो अब भारत के लिए एक अपहिल और बहुत ही मुश्किल टास्क है टू फाइट बैक इनटू दिस इवेंट, क्योंकि आगे और भी रिलेज दोस्तों आज के दिन में आने वाले हैं।
1: जी चलते चलते तैराकी की बात कर लेते हैं। पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट में दक्षिण शशि कुमार और अनिश सुनील भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
0: यस इंडीड, ये सारे अपडेट्स हम आपके लिए इस समय सुबह 9:30 बजे लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले आपको एक और खुशखबरी दे दे, छोटी सी है लेकिन है तो खुशखबरी, कि भारत मेडल टेबल में भी इस समय अब 15 स्टैंड से 12th पोजीशन पर आ चुका है। जी हाँ, 12वें स्थान पर अब भारतीय टीम आपको मेडल टेबल में दिखेगी। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 18 मेडल हो चुके हैं, एक गोल्ड जो और ऐड हो गया है आज सुबह शूटिंग की दुनिया से, उसकी बदौलत अब भारत के पास है 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स, विच पुट्स इंडिया ऑन द टेबल एट द 12th पोजीशन प्रेजेंटली। उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का जो सफर है जारी रहेगा भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। फिलहाल के लिए मोहम्मद शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे सुबह के 10:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। गुड बाय फॉर नाउ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: Rainbow FM. Rainbow Rap. It's gonna rock it, no, watch my roll. Rainbow Rap.

0: वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों हम लेकर आ गए आपके लिए आज सुबह की घड़ी के 10:30 एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स. और मेरे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद आजमी. सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत हुई द बिग न्यूज़ के साथ कि भारत को उसका ऑन गोइंग एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक मिल गया. जी हाँ, दिस वॉज बॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग वेयर आर शूटर्स गॉट अस द कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द 10 meter air pistol mixed team event. Kamaljeet and Suruchi Singh putting up brilliant performances from the side to reach a tally of 484.6, thereby helping India get that coveted gold. और उसके साथ ही shooters ने men's 50 meter rifle 3 position में भी आज भारत को silver medal दिलवा दिया है, with excellent performances coming in from Aishwarya Pratap Singh Tomar, Neeraj Kumar and Rudrangsh Balasaheb Patil putting in a total of 762, thereby helping India get the silver. Moving on to the other big news of the day, this would be from the world of squash, जहां दोस्तों आपको बता दें कि अभय सिंह made quick work of Japan's Runosuke Sukhoi, beating him 3-0 in straight matches, 11-4, 11-3, 11-6. In just 30 minutes to reach the men's singles semi-final. A small correction over there, in straight games to win the match 3-0 in just 30 minutes and thereby reach the semi-final. Abhay could be facing compatriot Veer Chatrani in the last four if Veer gets past Pakistan's Mohammad Irfan in his quarter-final later. An all-Indian semi-final would assure India at least of a silver medal. शाहिद
1: जी, शूटिंग की बात की, शूटिंग से आपने शुरुआत की थी, अच्छी खबर आज सुबह ही आ गई थी. शूटिंग से एक और बड़ी खबर आने वाली है. ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा के पुरुष व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 589 जबकि नीरज कुमार ने 588 अंकों के साथ चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया. अब ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों शूटर हैं, पदक के लिए प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे यहाँ भी मेडल देखने को मिलेगा.
0: जी, और शायद कनू की दुनिया से अगर बताएं अपने मित्रों को तो कोई भी खास खबर नहीं है कनू स्प्रिंट में आज भारतीय एंगल से, क्योंकि इंडिया फिनिश्ड आउटसाइड द मेडल रेसेस इन 2 इवेंट्स इन कनू स्प्रिंट. जी हाँ, भारत का सफर 2 इवेंट्स के अंदर मेडल कंटेंशन से बाहर हो गया है. भारत के प्रोहित बरोई और प्रसन्न कुमार चिंपादेल सत्य प्रकाश फिनिश्ड 5th इन द मेन्स कयाक डबल्स 500 meter सेमीफाइनल क्लॉकिंग 1:40.308 seconds. देन दे कम्पीटेड इन फाइनल बी जहाँ पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 4 पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 seconds. वही वेमेन्स कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 5 pairs विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 seconds. वेल, इसके साथ ही द इंडियन वेमेन्स कयाक 4 500 meter क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पम, पूजा सोनिया देवी फायरबम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 seconds. शाहिद
1: साक्षी, टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं. महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता. अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मिवा हरिमोटो से होगा. पुरुष युगल में मानव और मानुष की भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा. इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है.
0: जी, एंड क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त. और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रांग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम. और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोवेटेड पॉइंट्स ऑफ 31 points, विच देयर बाय हेल्प देम ऑल्सो गेट अ लीड इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर इन द फर्स्ट हाफ ओवर नेपाल. सेकेंड हाफ की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ. भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे. मैच ऑन गोइंग है बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस.
1: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है. बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है. उन्नति ने उत्तर कोरिया की यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी. अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा.

0: राइट और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से भी कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स. और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का दे लॉस टू हरिमोतो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32. एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी. And our women will be making us proud once again.
1: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है. आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल हो कितनी ऊपर जाएगा. फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की जो इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग की खबर के साथ। बॉक्सिंग रिंग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबूजादेह को कड़े मुकाबले में 4-1 से जो निर्णायक मुकाबला था उसमें शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत से ही सचिन ने अपनी रफ्तार और सटीक पंचों से दबाव बनाए रखा। अबूजादेह ने अंतिम दौर में जोरदार वापसी की कोशिश की लेकिन रिंग में उनकी थकान साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर सचिन लगातार चुस्त दिखाई दिए और उन्होंने कई सटीक मुक्के लगाए भी और इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान

0: शुंसुके कितामोतो की चुनौती हो गई, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
1: राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनहत सिंह इन द वुमेन्स सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रिट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग अ 3-0, 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट अ 30-year-old अपोनेंट। अनहत विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको ये भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल, इट वाज ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम। द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6, 8-11, और आगे भी अगर बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम, एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वाश। शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वाश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स में एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहां पे उम्मीद रखेंगे वैशी बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको यह भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रियोनसुके त्सुकिकी, बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौधरानी इन द लास्ट 4 इफ वीर गेट्स पास्ट पाकिस्तान्स मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दे होने वाला नहीं है, क्योंकि वीर चौधरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
0: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी, लेकिन यहाँ पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहाँ अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था, वहाँ भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे, जबकि ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
1: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड, मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स एंड स्क्वाश, वील हैव टू वेट एंड वॉच एस टू हाउ इट टर्न्स आउट इन द सेमीफाइनल्स फॉर अभय सिंह इन स्क्वाश अप अगेंस्ट मोहम्मद इरफान। लेकिन अब मूव करेंगे बैडमिंटन की तरफ भी, जहां उन्नति हुडा बिगान एशियन गेम्स कैंपेन ऑन अ विनिंग नोट, डिफीटिंग नॉर्थ कोरियाज जी मी सोंग 21-9, 21-10 इन स्ट्रेट गेम्स। उन्नति विल नाउ बी फेसिंग मलेशियाज वोंग लिंगचिंग इन द नेक्स्ट राउंड। हमने आज दिन की शुरुआत में एशियन गेम्स में देखा किस तरह से भारत के इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन जो किसकी जो शुरुआत हुई एशियन गेम्स में, उसमें ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो ने मालदीव के अमिनात अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव्स अपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स, विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली, द स्कोर लाइन बीइंग 21-8, 21-7।
0: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टथलॉन होता क्या है। हेप्टथलॉन महिलाओं की 2 दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्टपुट और 200 मीटर दौड़ होती है, जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
1: राइट, और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ, लेकिन देखते ही सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे 4 गेमों में 4-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार 4 गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
1: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेंस सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद अ स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेंस सेमीफाइनल एंड थेरबाय बोथ द इंडियन टीम्स हैव नाउ booked their place in the finals of the ongoing kabaddi in the Asian Games 2026.
0: साक्षी, फेंसिंग की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला ईपी टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना

0: करना पड़ा है। उज्बेकिस्तान ने कड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं सर्फिंग की एक खबर दे देता हूं। सर्फिंग में महिला शॉर्टबोर्ड राउंड एक में भारत की सुगर शांति गोयन ने कमाली प्रकाश अपने अपने हीट में सबसे निचले स्थान पर है। यानी यह दो खबरें हैं लेकिन दोनों में कुछ खास भारत के लिए नहीं है।
1: वेल, कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 से वो पोकेमॉन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकेंड वन ऑल्सो 1-0 again to make it a straight win of 2-0. Equestrian ke andar India, who had won gold in team dressage last edition, main aapko yaad dila de, is baar Bharat ne chauthe sthan par samapt kiya hai behind China, Japan aur Korea. Bharat ke kul milakar jo ank bane the wo the 201.971 points, jisme Shruti ne 68.059, Hriday ne 67.353 aur Jay ne 66.559 ke scores ke sath contribution diya. Ye tino Bharat ke liye top 3 scorers बने। गौरव जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
0: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइनल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइनल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
1: राइट, एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40-year-old पार्टनरिंग बी Senthil Kumar, storming into the mixed double squash semi-finals with a straight game win over their Filipino opponents 11-3, 11-5. This victory assures India of at least a bronze medal in the event. Joshna and B. Senthil Kumar will now face Hong Kong's Lee Ka Yi and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow. So, here, Bharat ko ek padak तो अब जरूर मिलेगा। वहीं अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुनसुके सुखोई, बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल्स। और आपको बता दें कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना सेमीफाइनल में भारतीय अपोनेंट के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि वीर चतरानी अपना मुकाबला मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे हार गए 1-3। और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ। और अनाहत सिंह, उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल। द 18-year-old ऑल्सो डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। शी विल नाउ बी फेसिंग जापान सतोमी वतानबे इन द सेमीफाइनल।
0: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दे, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है। महिलाओं की बात हो रही महिला हॉकी की, जहां लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा। कोई बाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया। भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है।
1: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है इस अपडेट के अंदर, लेकिन आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: You were listening to the Asian Games.
4: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन

0: सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
1: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया,
0: जी
1: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वह आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
0: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
1: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब
0: जी
1: उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
0: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नलीनुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
1: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था,
0: जी
1: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
0: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
1: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया।
0: जी
1: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
0: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
0: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
1: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये

0: कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया।

0: बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार-बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।
1: उफ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं दोपहर 3:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे बड़ा अपसेट जो आज हम कह सकते हैं आज के दिन का है वो रहा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां पर हमने देखा कि द वर्ल्ड नंबर फाइव पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हु आर द डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैव क्रैश्ड आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बैडमिंटन मेन्स डबल कैटेगरी। जी हाँ, द थाई पेयर ऑफ पक्कोपो एंड पीरा चाय सुखपू वन बाय अ मार्जिन ऑफ 21-12, 19-21, 14-21। अ वेरी बिग अपसेट फॉर द इंडियन बैडमिंटन कंटिंजेंट एंड फॉर द बैडमिंटन फैंस। आफ्टर अ डोमिनेंट विन इन द फर्स्ट गेम सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी लॉस्ट द सेकेंड गेम आफ्टर अ नेक टू नेक फाइट विद पक्कोपो एंड सुखपुन। द थाई पेयर वन बाय अ क्लोज मार्जिन ऑफ 21-19 द सेकेंड गेम। द मैच देन गॉट टाइड एट 1-1 एंड इन द फाइनल डिसाइडिंग गेम द थाई पेयर वर जस्ट टू गुड फॉर सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंड इंडिया वेंट डाउन 14-21 इन द डिसाइडर टू लेट द थाई पेयर विन ओवर आर इंडियन डिफेंडिंग चैंपियंस।
2: अच्छी खबर दे दूं साक्षी, यहाँ बैडमिंटन में भारत के मिश्रित युगल में ध्रुव और तनिषा की क्वार्टर फाइनल की जो जोड़ी थी क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। जी हाँ, ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की जोड़ी ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 गो सून हुआट और लाई शेओन जैमी की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 22-20, 24-22 से शिकस्त दे दी है। दोनों गेमों में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय जोड़ी ने दबाव के पलों में शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में 27 सितंबर को ध्रुव और तनिषा का सामना विश्व नंबर 1 फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग की चीनी जोड़ी के खिलाफ होगा।
1: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि एक और निराशाजनक खबर हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, जहां पर हमने देखा आज मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल्स हो रहे थे, अब वो फिलहाल समाप्त हो गए। इसमें भारत की तरफ से दिया चितले और मनु शाह वो रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड दे वर फाइटिंग अप अगेंस्ट द चाइनीज यिंगशा सुन एंड चू क्विन वैंग, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑलमोस्ट इंडिया का जो सफर रहा है वो खत्म होते होते कगार से आते आते बच गया, क्योंकि पहले तीन सेट्स हम यहाँ पर कहेंगे जो पहले तीन गेम्स थे वो चाइना ने अपने नाम कर लिए हैं अभी तक 11-8, 11-5, 11-8। इसलिए ये सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों अभी तो फिलहाल जारी है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि चाइना ने एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग शुरुआत भारतीय जोड़ी पर करी है पहले तीन गेम्स अपने नाम करके। शाहिद
2: जी, यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको भारत की एक उम्मीद निरुपमा देवी 63 किलोग्राम के वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 7वां स्थान हासिल कर पाए हैं। उम्मीदें थी कुछ बेहतर करेंगी, कुल 217 किलोग्राम उन्होंने वजन उठाया। निरुपमा ने इस मैच में 93 किलोग्राम वजन उठाया, हालांकि 95 किलोग्राम उठाना चाहती थी लेकिन वहां नाकाम रहीं। किलियन जर्क में 124 किलोग्राम का भार उठाया, इस तरह उनका कुल स्कोर 217 किलोग्राम था, जो मेडल टैली में यानी मेडल के स्थान पर आने के लिए पोडियम पर आने के लिए काफ़ी नहीं था।
1: जी, स्विमिंग की दुनिया से भी आपको बता दें कि यहाँ पर काइंड ऑफ मिक्स न्यूज हम कह सकते हैं आई है, बिकॉज सजन प्रकाश प्रोग्रेस्ड आफ्टर फिनिशिंग 6th ओवरऑल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स विद द टाइम ऑफ 2:00.94, लेकिन जब फाइनल्स में उन्होंने आज प्रवेश किया तो वेटरन स्विमर फिनिश 7th इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई। ही डिड नॉट स्टार्ट इन द 100 मीटर्स बटरफ्लाई बट केम अप विद द वैल्यू

0: एफर्ट टुडे, वहीं पर अगर आप बात करें 21 साल के ऋषभ दास की, तो उन्होंने अपने निजी स्कोर को कह सकते हैं निजी टाइमिंग को और बेहतर कर लिया पिछली बार से, बिकॉज वंस द फाइनल्स ऑफ द मेंस 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट स्टार्टेड, बोथ द इंडियंस विच इज ऋषभ दास एंड उत्कर्ष पाटिल वर इन दिस फाइनल, बट नीदर फिनिश्ड अमंगस्ट द टॉप थ्री. द 21 ईयर ओल्ड ऋषभ क्लॉक्ड 1:58.77 इन द 200 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल्स टू फिनिश सिक्स, टेकिंग मोर देन अ सेकेंड ऑफ हिज प्रीवियस mark. वहीं पर उत्कर्ष पाटिल वाज सेवेंथ, clocking a time of 2:00.94. So he was basically, Rishabh Das was overall able to better his timing from the last time.
1: एक टेबल टेनिस से भी खबर दे देते हैं. महिला युगल में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा. यशस्विनी घोरपड़े और दिया चिटले की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में चीन की फैन शुहान और चेन ई के खिलाफ 0-3 से हार गई. चीनी जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था और तीनों गेम 11-7, 11-5, 11-8 से अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ यशस्विनी और दिया की महिला युगल स्पर्धा में चुनौती समाप्त हो गई. वहीं एक और खबर दे देते हैं, हरमीत देसाई और सत्यन गणासेकरन की, जापान के जो खिलाड़ी हैं सेरा मासुयामी और शुनके तोगामी के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके. भारतीय जो जोड़ी थी उसे सीधे गेमों में 5-11, 9-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा.
0: जी, and a very quick update from the world of boxing, in which in the women's 54 kg round, we found Pang Chol Mee defeating Preeti 5-0 in the round of 16. An unbelievable performance coming from the boxer. Of course, the Paris bronze medalist proved too good for the Indian Preeti out there, and she lost straight to her by getting defeated 5-0. So, निराशाजनक खबर जरूर, खबरें जरूर आती हुई यार दोस्तों इस अपडेट के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि शाम को जब एथलेटिक के इवेंट्स आएंगे, तो जिस कार से आज एशियन गेम्स में दिन की शुरुआत हुई थी सिल्वर और गोल्ड मेडल के साथ, हम आज दिन की समाप्ति भी कुछ मेडल्स के साथ जो आज हमने कमाए हैं उसके साथ कर पाएंगे. फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी, हम दोनों को दीजिए इजाजत. हम जुड़ेंगे आपसे शाम के 4:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स. फॉर नाउ थैंक यू एंड गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லி அஞ்சல்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आज के शाम 4:30 बजे आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आपको हम दे सकते हैं वो एथलेटिक्स की दुनिया से, बिकॉज एथलेटिक्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं और उसके अंदर द बेस्ट न्यूज दैट हैज कम इन फॉर अस राइट नाउ इज दैट मनप्रीत कौर हैज गॉन ऑन टू विन ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन द शॉर्ट पुट इवेंट in the women's shot put event. Ji ha, she has won bronze for India with the best throw of 17.17. aapko bata de ki Manpreet Kaur ka jo pehla attempt tha wo 16.32 ka tha, second attempt 16.41, third attempt 16.80, chautha attempt 17.17, panchwa attempt 16.75 aur chhata attempt tha invalid. chhate attempt ke baad wo kafi nirash bhi dikhi thi because unko laga tha ki shayad wo apna chhata attempt sabse behtar kar payengi, lekin kyunki wo invalid ho gaya to she had to suffice with 17.17, which thereby has given India its bronze medal, and with this the total number of medal tally also of India has gone up to 21. China ne liya gold isme और सिल्वर दोनों ही। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश खजूर जो है वो 100 मीटर्स के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने 10.32 सेकंड्स का टाइमिंग क्लॉक किया और अनिमेश खजूर ने 10.38 का टाइमिंग क्लॉक किया, और इसके बाद क्योंकि वो अब सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो चुके हैं, निराशाजनक खबर, भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है शायद 100 मीटर्स के आगे इस रेस के अंदर, अब फाइनल्स के अंदर।
2: जी बिल्कुल, अब बताना चाहूँगा बैडमिंटन की खबर है। हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नज़रिए से देखा जाए तो बेहद ख़ास खबर है। एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग ह्यू यान और लुई लोक लोक की जोड़ी से हुआ था। टीसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टीसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। अब राउंड ऑफ 16 में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसू मासुमो की जोड़ी होगी, यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के सामने दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिलने वाली है।
1: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने। लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पित तसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, देयर बाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया। तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स।
2: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं। ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में भारतीय तैराक जो ऋषभ दास हैं उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है, लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज़्यादा का सुधार किया। वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे।
1: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। जी हाँ, मनुष शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वैंग चू क्वीन एंड सुन यिंगशा इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हाँ कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे। कंप्लीट डोमिनेशन उनका देखने को मिला भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, प्रिटी मच गोइंग बाय द विद द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द इंटायर गेम in 4 in-

0: entire match in 4 straight games, making the lead to be 4-0 and thereby settled in with the bronze medal. So congratulations to the Indian mixed doubles team who got us the bronze today in India.
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई थी, लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है। उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहाँ भी कुछ अच्छी खबर आए। फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள், இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம். டெல்லி அஞ்சல்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहाँ वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत

0: Kaur has bought the bronze medal for India. Ji haan, with the best throw of 17.17 meters, Manpreet Kaur ne Bharat ko ek aur bronze medal dilwa diya. Iske saath hi Bharat ab medal table mein kul milakar 21 medals kama chuka hai. China ne दोनों ही गोल्ड और सिल्वर अपने नाम कमा लिए इन द वुमेन्स शॉट पुट. आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे. गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं. जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल. आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं. गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 मीटर के अंदर. अनदर medal coming for India, and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon, mein aapko bata de, Pooja finished in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds, while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin unke efforts kafi nahi the, Pooja isi wajah se 6th spot par finish kiya unhone heptathlon ke andar, wahi Anamika ne 8th sthan par khatam kiya. Aur last mein chalte chalte एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क. शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन टू अटेम्प्ट्स बिफोर आल्सो मिसिंग आउट एट 4 मीटर्स. शाहिद
1: जी बिल्कुल, अभी आपने गुरवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है. मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं. एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था. जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है. इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था. अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था. जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था. इससे अंदाज़ा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था. वहीं एक और खबर दे दे बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. अब उनके सामने जापान के शुनसुके किटामोतो की चुनौती होगी जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया. 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.
0: जी, और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया. लाल रेम सियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द थर्ड गोल. और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमी फाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ. एंड उसके बाद भारत का सामना या भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर.
1: जी बिल्कुल देख सकेंगे. और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है.
0: ऑफ कोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे. तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वाश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है. क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3, 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आगे बढ़ गए. और अब यहाँ से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा. लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहाँ पर वीर चौटरानी जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3. अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेन्स सिंगल्स. यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेन्स सिंगल्स के प्रवेश किया और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से.
1: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे. फिलहाल मुझे

0: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। एथलेटिक्स में भारत के लिए बड़ी खबर आई है। बारानिका एलंगोवन ने एशियन गेम्स 2026 की महिला पोल वॉल्ट में, जो पोल वॉल्ट की स्पर्धा होती है, उसमें कांस्य पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास गढ़ दिया है। बारानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की। कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की। दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया। इस उपलब्धि के साथ वरानिका एलंगोवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए ऐसे यह एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
1: जी शायद, थैंक यू सो मच। और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि विम्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है विम्स 400 मीटर फाइनल्स के लिए आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन अ हीट इन 53.46 सेकंड्स। शी एडवांसेस एज वन ऑफ द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट रनर्स आउटसाइड द टॉप टू फिनिशर्स इन द थ्री हीट्स। ईरान ज़हरा विंस द थर्ड हीट इन 52 सेकंड्स। अर्लियर इंडियाज़ किरण हैड फिनिश्ड सेकंड इन अ हीट इन 53.44 सेकंड्स टू क्वालिफाई।

0: क्वालिफाई डायरेक्टली। ये भी आपको बता दें कि द टॉप टू फिनिशर्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री हीट्स क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर द फाइनल विद द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट एथलीट्स अक्रॉस ऑल थ्री हीट्स ऑल्सो एडवांसिंग। वही मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। वेल द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल। विशाल पिप्स कतार अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स। इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स। शाहिद
1: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक पे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:29.38 सेकंड का समय निकाला। वहीं बहरीन के बिरहानू बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा, जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझाउ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है। गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। खास बात यह कि आइची नागोयो एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता। महिलाओं के 10,000 मीटर में जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला। पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ है।
0: हां जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स। यस, इट वॉज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी। चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पे प्राप्त हुआ। मनप्रीत कौर के नाम रहा आज का ब्रॉन्ज मेडल। एंड आपको ये भी बता दे कि दिस डेफिनेटली ये इस जीत के साथ उस समय भारत के हो गए थे 21 मेडल, लेकिन क्योंकि उसके बाद भारत का और मेडल भी आ गया एथलेटिक्स में, तो भारत की मेडल टैली राइज होकर बढ़ गई टू 22 मेडल्स। बट एक और चीज, मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल के अंदर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 10.32 सेकंड्स की टाइमिंग रही गुरिंदर वीर सिंह की और अनिमेश कुजूर की टाइमिंग रही 10.38 सेकंड्स की। सो दैट वाज एन अपसेटिंग डिफीट और शुड वी से एन अपसेटिंग न्यूज बिकॉज इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस 100 मीटर्स टुडे। शाहिद
1: जी, आपने मेडल टेबल की बात की, भारत की बताया, जहां पर भारत ने 2 गोल्ड 9 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक जीते हैं। वहीं अगर मेडल टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर अभी भी चीन बना हुआ, 97 गोल्ड 36 रजत पदक है, इसके अलावा 24 कांस्य पदक सहित 157 पदक जीतकर सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना, जबकि जापान की बात करें 27 स्वर्ण 42 रजत 44 कांस्य सहित 113 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक 17 रजत पदक 34 कांस्य समेत 64 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है।
0: जी, थोड़ा सा खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है कि अगर हम देखें पीपल्स रिपब्लिक चाइना हैज गॉट 97 गोल्स, वी विल टॉक अबाउट दैट शायद इन द नेक्स्ट अपडेट बिकॉज अभी वक्त हो गया है अपने सारे दोस्तों से विदा लेने का। मैं साक्षी मांडवाल और शाहिद आजमी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, आपके साथ एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे आज के दिन की आखिरी अपडेट के साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम आकाशवाणी ब्रिंगिंग टू यू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू सो मच।
2: एशियन गेम्स 2026 आइची नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। तो चलिए इस घंटे की आज की अंतिम अपडेट की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले एथलेटिक्स की, जहां 400 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट जीती और फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह रही कि तीनों हीट में उनका सबसे तेज, यानी सबसे तेज जो उनकी दौड़ थी वो तीनों हीट में सबसे तेज रहे। महिलाओं की 400 मीटर में किरण पहल और प्राची ने भी फाइनल का टिकट कटाया। किरण ने 53.44 सेकंड और प्राची ने 53.646 सेकंड का समय लिया। दोनों अब कल फाइनल में उतरेंगी। पुरुषों के हैमर थ्रो स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। दमनीत सिंह का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 67.56 मीटर रहा, जो उन्होंने शीर्ष 8 में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त उनके लिए नहीं रहा है। प्रवीण कुमार ने 65.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन वो 11वें स्थान पर है। शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए 68.10 मीटर का थ्रो चाहिए था। खास बात यह है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी इससे पहले इस दूरी को पार कर चुके हैं। इस तरह हैमर थ्रो के फाइनल में भारत का अभियान निराशाजनक देखने को मिला, जिस तरह से शुरू हुआ है।
2: जी, एंड नाउ गिविंग यू सम मोर अपडेट्स फ्रॉम हाउ द डे स्टार्टेड ऑफ टुडे। सिंस वी आर रैपिंग अप द डे टुडे, शूटिंग में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कमलजीत एंड सुरुचि इंदर सिंह वन एज द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम फाइनल इवेंट, मेकिंग द गोल्ड टैली फॉर इंडिया टू 2 मेडल्स। एंड अगेन इन शूटिंग वी हैड एपीएस तोमर, रुद्राक्ष पाटिल एंड नीरज कुमार इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस, विनिंग द सिल्वर फॉर इंडिया। और एथलेटिक्स में जैसे हमें भी बता ही रहते हैं आपको कि गुलवीर सिंह हैज वन एज द सिल्वर इन द मेंस 10,000 मीटर। टेबल टेनिस की दुनिया में दोस्तों आपको बता दिया, दिया चिटले एंड मनुषा लॉस्ट टू वैंग चुक क्विन सुन जिंगशा एंड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स फॉर इंडिया। वहीं मनप्रीत कौर ने भी भारत को आज ब्रॉन्ज दिलवाया है और कृष्णा जयशंकर मेनन ने फिनिश किया 5वें स्थान पर विमेन

0: इस शॉट पुट अरीना के अंदर शाहिद
1: जी, दो भारत के खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। भारत के गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गुरविंदर 11वें और अनिमेश कुजूर 18वें स्थान पर रहे। हालांकि दोनों भारत में जिस तरह से प्रैक्टिस करके जिस तरह गए थे, उम्मीदें थी कि काफी बेहतर करेंगे, लेकिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से वो चूक गए। आपको बता दें गुरविंदर ने 10.32 का समय लिया, जबकि अनिमेश कुजूर ने 10.38 का समय लेकर 100 मीटर की दौड़ पूरी की, और इनके इसके साथ ही उनकी जो चुनौती थी 100 मीटर में वो समाप्त हो गई है।
0: जी, एंड मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स आल्सो, वी हैड बरानिका एलाइन गोवन विनिंग अस द ब्रॉन्ज वुमेन्स पोल वॉल्ट फाइनल में। अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन पोल वॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्क्वाश की बात करें तो जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार बी डेविड पलिनो जेम के आरेबेदो ऑफ फिलीपींस इन मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल। यहां पर भी भारत के लिए एक मेडल कन्फर्म हो गया। आज का दिन स्क्वाश के नजरिए से तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। कबड्डी में दोनों ही महिला और जो मेन्स हॉकी की टीमें हैं भारत की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को, यानी भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वुड टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स आल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट शाहिद टुडे।
1: जी बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बरानिका एंगलगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स के खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
0: जी, और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज़ बता दें कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी लॉस्ट टू पकापोन एंड पीरताचाई सुखपोन 1-2 ऑफ थाईलैंड इन द मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे वर दी मेडल कंटेंडर्स एंड वी वर कीपिंग अवर होप्स अलाइव फ्रॉम दिस डू ऑफ इंडिया, बट थिंग्स डिड नॉट गो अवे। वेट लिफ्टिंग के अंदर भी निरुपमा देवी फिनिश्ड 8th इन द वुमेन 61 किलोग्राम कैटेगरी, अनदर हार्ट ब्रेक ओवर देयर। उसके साथ साथ हम बताते इक्वेस्ट्रियन में, जहां पिछली बार भारत को गोल्ड मिला था, आज उसमें गौरव पंडीर, हृदय विपुल चड्ढा, श्रुति बोरा एंड जय सूद रन आउट ऑफ मेडल प्लेसेस इन द टीम फाइनल। टेबल टेनिस में मानुष शाह बीट फराजी बेंजामिन मिक्स सिंगल्स राउंड 2 मैच। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इट वाज अ मिक्स डे ऑफ मेडल्स दैट वर पोरिंग इन, बट on a lighter and a better note we can also end the day with the overall medal tally in which india is standing right now. bharat ki standing agar baat kare to bharat is samay hai 12ve sthan par on the medal position with a total of 22 medals jisme se 2 gold aa chuke hai cricket aur shooting ki badolat, 9 silver hai, jo 9 silver hai usme 5 shooting se aaye hain, 1 weightlifting se, 1 वुशु से, 2 एथलेटिक्स से, 11 ब्रॉन्ज है भारत के पास जिसमें से 4 शूटिंग के हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट, 1 सॉफ्ट टेनिस, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस।
1: जी, और सबसे ऊपर चीन बना हुआ 98 गोल्ड के साथ 100 यानी शतक लगने वाला है, 37 उसके सिल्वर मेडल जबकि 24 उसके कांस्य पदक। वहीं जापान 28 गोल्ड, 43 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज समेत 115 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज समेत 64 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: जी, आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अभी मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम एक बार फिर कल सुबह आपके साथ 9:30 आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे टू ब्रिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். நேரம் 7:36 ஆயிட்டு. நேயர்களை நாம் இணைந்திருக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ரெயின்போ சாட் பாக்ஸ், சாட் வித் பாட்ல தான் இணைஞ்சிருக்கும். நம்ம கூட இணைய போற அடுத்த நேயர், வணக்கம், யாரெங்க இருந்து பேசுறீங்க?
4: ஹலோ,
3: வணக்கம் சார், உங்க பெயர்?
4: சத்யநாராயணன், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து.
3: சொல்லுங்க சார், உங்களுக்கு என்ன படத்துல இருந்து பாடல் வேணும்?
4: பாடல் படம் வந்து மனுநீதி.
3: மனுநீதி, ஓகே.
4: பாடல் வந்து மயிலாடும் பாறை.
3: எதனால சார் இந்த பாட்டு நான் பிடித்தோம்?
4: ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாட்டு கேட்டு, ரேடியோல கேட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டா இருந்தது, சரி நம்ம கேட்கலாமே நினைக்கின்றேன்.
3: அடா யாருமே கேட்காம இருக்காங்க.

0: நேயர்களின் கவனத்திற்கு, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுக் கோப்பை போட்டிகள் குறித்த சிறப்பு தரவுகளை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா. Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambar and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Mandwal with all the details.
2: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions in individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
3: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलॉन में पूजा छठे और अनामिका अनीश

0: आठवें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
2: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वही मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
0: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हांग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में

0: हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने सांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
0: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4

0: 500 meter quartet of Dhanamanjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य हिमांशु सिंह तेजस पाटिल और कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।

0: इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
2: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place, with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Joshua Chinnappa and V. Senthilkumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's shotput final, while Praveen Chitrabal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400-meter final in athletics, with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400-meter final. And athletics action ends with the women's 1500-meter final, with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton, with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।